चकरक चीचाचो चकलो रम गंडो वंडो लकरकटम अक्को टक्को इडिगिडिगिडिगो इडिपाय विडिपाय चिकिचकचो गिलिगिलि मल सुलुसुलु मल मकनक हुकुबुकुरे टुकुबुकुरे चकलक बिक्को चिक्को सिलिसिलिसिलिगो बगडदुम चकलदुम चिकिचकचो।

0: जा
1: जे
0: न जाने किस पे आएगा
2: मैं भी कहना चाहूँ मैं भी कहना चाहूँ पर आला ना चे
1: आज चले ने भाई
0: जाने किस पे
1: वो मोर एंड बॉल आउट यस Vom and ball out, yes. Why give me the thing, am I? Why give me the thing? Give me the funeral, boy.
2: Now we cannot tune. Now we cannot tune. Funeral or nothing.
1: I'm telling you. Why give me the funeral, boy? We love it. Why we love funeral, boy? Why we love funeral, boy? Give me funeral, boy. Give me funeral, boy.
3: Big up DJ Vom Vom one time.

0: फिल्मी गाने के नए वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें।
1: Is this the same one?